मरण काल का त्रास न मरिय जोसदा हमारी पछाओ श्री अस तो जजू करिहो रक्षा राख ले हो मोह रखन हारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तमोह पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतराऊ काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारद भेदा जाको भेम न पावद भेदा ताको कर पाहन अनमानत मह मूड कछ भेद न जानत मह देव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आपे अपनी बुद्ध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिन सजाऊ प्रथम संसारा एकै रूपा नूप सरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जिरज सेतज कीनी उत भुज खान बाहर रच दीनी कहु फूल राजा हो बैठा कहु सिमट भव शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सयम भव अवरछा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संघरो दोट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छकरता श्री अस धोज जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख नत सभ आपत कोई अड़िल।

के रहे। ओ जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 17 सहस्पण जाए अर्ध सहस्पण 3 कह जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्याने त्रियाय त्रित्रय मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आप जूं दोहरा 10 जानकर 10 पर की जय कृपा अपार आप हादर रख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं नग्नेश प्रथम नाऊं किशन बिशन कबू न त्याऊं

एक कह माते एक न माने उन सिमरत शास्त्र भेद सब बेद कह हम एक न जाने श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के

जिसका सब सधारो। जे को खावै जे को पुंचै तसका होए उधारो। एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग धरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे ओई। तरस पे आ मेहरामत होई।

वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ध्याय रंगत गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है करनो निदा वताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसों ही पातशाहियां दे आत्म स्वरूप जबर छतर तख्त मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर

एक ओंकार सत प्रसाद जय कर कीर्त अति है करती तुम गब हो मेरे निभाओ का सोहना नित जीअड़े संभालियन देखा कादी तेरे दाना कीमत ना पवे किस जाते कम सिमार संबत साहा लिखे रासा महला पहला उच्चे घर उच्चे गुर उच्चे देश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राधाई सो रहा विश्व चसिया कड़िया पर राधी वाली मारुआ और एको चंदी पक बने तार का मंडल जल कुमोती तो माले अनुभव पवन चबरो कर सकल बन राय कुला ज्योति ऐसी आरती होए पखंडा तेरी आरती हर हटा सब समह जो जोत है सोए अन दिन मोहे आहि प्यासा कृपा जल देह नानक सारन को होए जाते तेरा नावासा रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भपरिया मिल साधु कंडल कंडा गुरु लिखत लिखे गुर पाया मन हर मंडल मंडा है कर साधु अंजलि कौन बड़ा है कौन बड़ा है ताकत हर साधन जाने आओ जने अंतर हो मैं कंडा है ज्यों ज्यों चला चुका है दुख पावे चमकाल सह सर डंडा है हर जन हर हर नाम सिवाने दुख जन्म मरण पर डंडा है अविनाशी पुर पाया परमेश्वर ओसो कण कर मंडा है हम गरीब मस्कीन तपते हर रात रात बड़ बट्टा है जन नानक नाम वधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा है करो बेनती सुनो मेरे नीता संत पहल की जेना इहा खाट चलो हर लाह आपे बदू कुमेला आप कटै दृश्य नारे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ यो संसार विकार सब से मैं तरयो ब्रह्म के सहज गाए पिया मधुरा जाको आए सोए बेहा ज्यो हर गुर के मन से राओ निज घर महल पावो सुख सहजे बाहर न होए गो फेरा अंतर ग्राम

त्रय पर्य पवित्रय प्रतिशय आदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद त्वय प्रसाद काते के अचिज देशा के अपिज पेशा के अगंध कर्म के अपन परम के अपिज लोक के अजुत शोक के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभय के त्रभंग तुजय के अशोक वर्ण के सर्वा परणय के जगतं कृतियं के छत्रं छत्रियं के ब्रह्म स्वरूप के अनुपहनु पै के आद अदेव के आपो भेव के चतरंग बिहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर हिमा रहा कह के पाक बेअबे के गैबल गैब के अफल गुनाह के साहन साह के कारण कुणिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौनाई के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसाई के सर्वत्र डाले के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंताओ के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परम अफीम के अकल अलाम के साफ कलाम को सुनन वजू है तमाम रजू हमेशा सलाम सलीकत दाम गरिमर सगस्त गरीबल प्रस्ताय बिलंदल मकान है जिमे जमाना है तमजर तमाम दान हरि फल जिमे रजाय के जकीन है अनेक तरंग है भेद है भंग है जी जल नवाज है गनी मुल्क राज्य निरुक्त स्वरूप है तेरे मुक्त भूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज सदा सुरसाज है समस्त सदाव सदैव काम निर्बाध स्वरूप है गाद रूप है ओ अंग आद रूप है ना सुप है नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गन त्रिवादी अगंजी अगाधी सुभंग त्रिभागी सुसरमा अरागे त्रिभुगत स्वरूप है नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभ है भुगत स्वरूप है प्रजुगत अनुप है निरुक्त सदैव भुगत प्रभ है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनुप है चात्री छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेक है भरम है करम है अनाद जुगाद अजय है व्यय है भूत है तूत है अनास उदास तंद बंद है अपगत बरक्त नास प्रकाशन चिंतिया सुनंत अलिख्या अदिख्या अलिख्या पेख्या टा है गा है सम है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चर प्रचंद प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंताओ सर्वंख्याता सर्वंगताओ सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ताओ सर्वंग प्राण सर्वंगण सर्वंगकर्म सर्वंगधर्म सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ताओ लिछावलछंद प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साक श्री कै मितो अमीक सदैव प्रभ जय अजह है भगवती छंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेश्वर सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमागे के हुसनत जागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है कुसनत जमाल है गरीब मुल्क राज है गरीब नवाज है हरि फुल सकन है रस रिप कन कलंक प्रणास है समस्त निवास है गंजल गनी मिर जय करीम है समस्त जवाहे के साहिब करा के नरकुं प्रणास है बहतल निवास है।

जगत ईश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व वारण है, त्रित की धरन है, जग की करण है, मन माने है, जग जन है, सर्वं भर है, सर्वं कर है, सर्वपास सर्वनाश है, करना कर है, बेसो बर

जप है तप तप है कृत कृत मृत मृत अमृत मृत है कर्ण कृत कृत कृत तानी त्रितम तेसर है परमेश्वर है अकृत कृत अमृत मृताये अजबा कृत मृत मृताये निर्नायक है खलकायक है विश्वभर है करुणालय है निर्नायक है सर्पायक है।

दुष्ट अरिष्टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुड़ चाच सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल पास ते ताहु बारा जिनड़ नाम ते हर कहा दर्द दुर दुख ते रहा खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आप खाद लिहो बारी सर्व ठोर मोह हो सुहाई दुर दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखी अनको छह करता श्री अस्तो जो जा पै दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित पण पावे सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल सुने गोंग जो जाहि सरसना पावे ईश्वर मोड़ चित लाए चतरता आवई दुख दर्द पाओ निकट नांग तिन नर के रहै हो जो जाके एक बार जाओ पई को कह जाओ पई संबत सत्र है सहस पुण जय अर्ध सहस फुल तीन कह जय

सिमरत सासर वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जानियो तेरी असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बखाने दोहरा।